जी के संग सहाई रहौ नारायण प्राणी आधार हम संत जनारे नारा पतित पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतिपाला सद जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाई बहुड़ ना जोनी पाई जिस देव पुरख विधाता हर रस तिन ही जाता जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरणी पाया जिस देव पुरख विधाता हर रस तिन ही जाता जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरणी पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु वाहिगुरु।

काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै विप्रवाह साचा साहेब साच नाए भाख्या भाओ अपार आखे मंगे देहे देहे दात करे दातार फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार महो के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यारे अमृत वेला सच नाओ वड़ियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोह द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सचियार था प्या ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निदान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना अखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विण पाणी के नाए करी जे तिस टुपाई वेखा विण करमा के मिले लई मत विच रतन जवार माणक जे एक गुर की सिख सुनी

ले जन को नदर करम तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिसरा दुदाई दाया खेले सबल जगात चंगियाईया बुरियाईया बचे धर्म हदूर करमिया पो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गे मसकत काल नानक ते मुख उजले के ती छुट्टी नाल सो दर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे तेरे नाद अनेक शंका किते तेरे वावन हारे किते तेरे राग पुरी सो कहिए किते तेरे गावन हारे गाव तोनो कौन पाणी बैसंतर गावे राजा तुम बुवारे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गाव तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुभारे गाव तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देव ते अंदर नाले गाव तुदनो से समाधि अंदर गाव तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग विदा नाले गाव तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अशर तीर्थ नाले गाव तुदनो जोत महाबरसूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खांड मंडल ब्रह मंडा कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जोत भाव रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब सचा सची नाई है पियो सी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती करका जिन सी माया जिन उपाई कर कर देखे किता अपना जो तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पात शाह शाह पात साहिब नानक रहण रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोय के बड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहया जाए काने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गैर गंभीरा गुण गहीरा कोई न जाने तेरा किता के बड़ चीरा रहाओ सब सुरती मेरा सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुरु गुरहाई कह न जाई तेरी दिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगे आई आओ सिद्धा पुरखा क्या बड़े आईया तुद विण सिद्धि कने ना पाईया करम मिले नाही ठाकुर हाईया आखण वाला क्या बेचारा सिवती भरे तेरे भंडारा जिस तू देत से का चारा नानक सच सवारण हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाओ आखने औखा साचा नाव साचे नाम की लागे भूख ओत भूखे खा चलिए दुख सुख विसरे मेरी माए साचा साहेब साचे नाए रहाओ साचे नाम की तिल वडे आई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखण पाए वड्डा न होवे घाट न जाए ना ओह मरै न होवे सोग दिंदारे न चुके भोग गुण एहो होर नाही कोई ना कोहो आना कोहोए

दास इह सुख मंगै मौको कर संतन की तुरे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग श्री राग महला पहला कार पहला मोती ता मंदर ऊसरे रतनी ता हुए जड़ाओ कस्तूर कुंगु अगर चंदन लीप आवे चाओ मत देख पुला विसरै तेरा चेतन आवे नाओ हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही था रहाओ धरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ मोहनी मुख मणि सोहै करे रंग पसाओ मत देख पुला विसरै तेरा चेतन आवे नाओ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आकायाओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पुला विसरै तेरा चेतन आवे नाओ सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानक सब वाओ मत देख पुला विसरै तेरा चेतन आवे नाओ श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आर जाओ पवन पियन अपे आओ चंद सूरज दोई गुफे न देखा सुपने सौड़ न थाओ पी तेरी कीमत ना पवे हो के वड़िया खानाओ सचा निरंकार निज थाए सुन सुन आखण आखणा जे भावै करे तुमाए रहाओ कुसा कटिया वार वार पीसण पीसा पाया की छेती जा लिया भसम छेती रल जाओ पी तेरी कीमत ना पवे हो के वड़िया खानाओ पंखी होए के जे पवां से असमानी जाओ नदरी किसे ना आवो ना किश पिया ना खाओ पी तेरी कीमत ना पवे हो केवड़िया खानाओ नानक कागद लखमण पढ़ पढ़ कीचे पाओ मसू तोट नया भी लिखण पुण चलाओ पी तेरी कीमत ना पवे हो के उड़िया खानाओ सी राग महला पहला लिखे बोलण बोलना लिखे खाना खाओ लिखे वाट चलाई आ लिखे सुनवे खाओ लिखे शाल वाई है पढ़े के पुछण जाओ बाबा माया रचना तो अंधे नाम विसारिया ना तिस इना ओ रहाओ जीवन मना जाए का इथे खाजे काल जिथे बै समझाई है तिथे कोई ना चलियो नाल रोवण वाले जितड़े सब ने पंड पराल सब को आखे बहुत बहुत घट न आखे कोई कीमत कहने न पाईया कहण न वड्डा होए साचा साहेब एक तू होर जिया के तेलो नीचा अंदर नीच जात नीची हूं अत नीच नानक तिनके संग साथ वड्या सो रीच जिथे नीच संभाले न तिथे नदर तेरी बख्शीश श्री राग महला पहला लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार पर निंदा पर मल मुख सुधी अगन क्रोध चंडाल रस कस आप सलाहना ए करम मेरे करतार बाबा बोली है पत होए ऊतम से दर ऊतम कही है नीच करम बैरोय रहाओ रास सोयना रास रूपा कामण रास परमल की वास रास घोड़े रास सेजा मंदर

कर कर रखे तेरे तारे सेई तुदनू गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनू गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी

सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसार नहारा हरे आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाओ तुद बिन अबर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावें हर त्यावें तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त पय जन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहचल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करे सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब साग का जान होई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तौ भावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनु कृपा करें ते नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप भी छोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मेल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनु तू जानाए है सोई जन जाने हर गुण सदही आख बखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अबर न कोए तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सर वरडै पहिले निवासा पाणी पावक तिन्हें किया पंकज मोह
ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ ਅਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਅਲੇ ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ

अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर बहुशोभ खंड ब्रह्मंडाहि हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वुड वड्डाहि जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाहि राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला एहा खाड़ चलो हर लाहा आगै बसनु सहेला औद कटै दिन सुरै नारे मन गुर मिलका सुवारे रहाओ एह संसार विकार संसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस जगाए पियावै एहो रस अकत कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुर ते मनहि बसेरा निज घर महल पावो सुख सहजे

मांगनी न आवे। काखी एक है दरस तुहारो, नानक उन संग मोहे उदारो। सुखमनी सुख अमृत प्रव नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल परहरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत काज बिगल ना लागै, प्रभ कह सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कह सिमरन भाव ना ब्यापै, प्रभ कह सिमरन दुख ना संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सरबिन दान नानक हर रंग। प्रभ कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध। प्रभ कह सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। प्रभ कह सिमरन जब तब पूजा, प्रभ कह सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कह सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कह सिमरन दरगह मानी। प्रभ कह सिमरन होय सफला, प्रभ कह सिमरन सुफल फला। से सिमरह जने आप सिमराए, नानक ता कै लागो पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कह सिमरन उदरै मूचा। प्रभ कह सिमरन त्रिसना बुझै, प्रभ कह सिमरन सब कह सुझै। प्रभ कह सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कह सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कह सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माह समाए। प्रभ जी बस है साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ कह सिमरह से तनवंते, प्रभ कह सिमरह से पतवंते। प्रभ कह सिमरह से जन परवान, प्रभ कह सिमरह से पुरख प्रधान। प्रभ कह सिमरह से बेमोहताजे, प्रभ कह सिमरह से सर्व के राजे। प्रभ कह सिमरह से सुखवासी, प्रभ कह सिमरह सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जन आप हृदय आला, नानक जन की मंगे रवाला। प्रभ कह सिमरह से पार पुकारी, प्रभ कह सिमरह तिन सद बलिहारी। प्रभ कह सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ कह सिमरह तिन सुख बिहावे। प्रभ कह सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ कह सिमरह तिन निर्मल रीता। प्रभ कह सिमरह तिन अंध कनेरे, प्रभ कह सिमरह बसे हर नेरे। संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कह सिमरन कार्ज पूरे, प्रभ कह सिमरन कबह न झूरे। प्रभ कह सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कह सिमरन सहज समानी। प्रभ कह सिमरन नेह चल आसन, प्रभ कह सिमरन कमल बिंगासन। प्रभ कह सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन काम तन पार। सिमरह से जन जन को प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भक्त प्रगटाए, हर सिमरन लाग बेद उपाय। हर सिमरन पह सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीत चहु कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन की ओ सगल अकार, हर सिमरन में आप निहंकार। कर कृपा जैसे आप।

कै संग जिह मार कहे गण जाहे न को सा हर का नाम उहां संग तो सा जिह पैंडे महा अंध गुबार हर का नाम संग उधियारा।

निभावै। कहाँ बुझारत बूझै डोरा, निस कही है तौ समझै पोरा। कहाँ बिसन पद गावे गोंग, जतन करै तौ पिहि सुर भंग। कह पिंगल परपत पर भवन, नहीं हो तू हां उस गवन। करतार करना में दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै। संग सहा

आप आव करतन वेरा किसे दूर जनावत किसे बुझा आवत नेरा उपाव सियाणव सगल ते रहत सब कह जाने आत्म की रहत जिस पावे तिह लय लड़ लाए थान थरंतर है असमाय सो सेवक जिस कृपा करी निमुख निमुख जप नान करी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी।

जन प्रवयाम करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की नाथ ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब प्रमाया ब्रह्म ज्ञानी ते कश ब्रह भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान।

का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई, ब्रह्म ज्ञानी कहो बाल बाल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी कहो खोजे महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।

करन ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद भिख्या पर हरे मान की बासना, मन ते टरे इंद्री जद पंज दोख ते रहत। नानक कोट मध्य को ऐसा परस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसान।

वह जन कोय कर कृपा अंतर उर तारे पास प्रेत मुग्ध पाथर कंतारे सर्व रोग काखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहु जुगत किते न पाई है धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म।

सत्कारस्तपदि कई कोट होय पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पतीथवासी कई कोट बन ब्रह्मदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कव का विचार है कई कोट नव तन नाम ते आवे नान करते काम तन पावे कई कोट पह भवानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेगात्म निकोर कई कोट पर दर्भ को हिर है कई कोट पर दुख ना कर है

करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राज रस भोगी, कई कोट पंखी सर पे पाए, कई कोट पाथर वृक्ष निभ जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट शशि हर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्रियां।

कोय। कबहु सा संगति हो पावे उसे स्थान ते बहर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास उसे स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते करांग सदा बस सह पार ब्रह्म कै संग।

कै संग बूझै देखै करे विवेक आपहेक आपे अनेक मरे न बिनसे आवे न जाए नानक सद ही रहे आसमाय आप उपदेश समझे आप आपे रचे आ सब कै साथ आप किनो आपन विस्तार सब कछ गाह करने हार ते पहन कह किस होय थान थरंतरे कैस होय अपने चलते आप करने हार कहो तिक करे रंग आपार मन मह आ मन अपने माहे नान कीमत कह न जाए सत सत

सोई थया। संत का दुखी बिग रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगे मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए, संत के दुखी की पुजे नासा, संत का दुखी उठ चले निरासा, संत के दुख न दृष्टे कोई जैसा भावे तैसा कोई होए, पया कीर्तन बेटे कोई नानक जाने सच्चा सोए, सब कर तिसके हुकर निहार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की युह तद करो दिन रात, तिसे ते आवो सास गिरास, सब कछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थी, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार।

जियो नैन पेख ठाकुर का रंग सब संग बिन सह सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटहे पाव जपिए हरबिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर गय नानक उजल मथा।

हरनाम हरे उपवंत होय नाही मोह है प्रभु की जोत सगल कर सो है तन बनता हो क्या गर्भ है जा सब के तिस्का दिया दरबे

करनाओ। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सिमृत वेद प्राण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान।

केशवरनाय दृष्टाय नाम तह नाम रूप रंग नाम सुखर नाम कसंग नाम राह जो जन तृप्ता ने मंत्र नामे नाम सुमानी उठ बैठ सोत नाम कहो नानक जन कै सदकाम।

पूर्ण पुरुष नहीं रुलाने सुबर परे प्रेम रास रंग विजय चाव साध के संग परे सरनान सब त्यागन तर प्रगा संदन ले बिलांग भागी जपया प्रभु सोय नानक नाम रते सुख होय सेवक की मन सब पूरी पही सद गुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभु होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंदर काड मुख जन पहया जन्म मरण दुख प्रम गया ऐश पुनी सरदासा पूरी राव रहया सद संग हजूरी

तक पाहे, जुगा जुगंतर खाहे खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिगसा विपरवाह। साचा साहेब साच नाए, पाख्या पाहो अपार, आखे मंगे देहे देहे, दात करे दातार। फेर के अगे रखिया जित दिसै दरबार, महाऊ के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार।

अहंकार असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार होए अखरी राम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुन गाह अखरी लिखन बुलन बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन ए लिखे तिसर राहे जिफर बाहे तिब तिब पाहे।

रूप तथा घाट घटिया बहुत अनूप ताकिया गलां कथिया ना जाहे जे को कह पिछा पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना उह मरहे ना ठागे जाहे जिनका राम वसे मन माहे तिथै भक्त वसे के लो करे आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथे था अंत नंत तिथै लो लो आकार जिव जिव भगवंत वात वकार वेखा विगसा कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद अथियार पाओ खला अगंध बताओ भांडा पाओ अमृत तटाल घड़िया शब्द सची टकसार।

बैराड़ी, महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना

सिंध सागर तारणो जो शरण आवै तिस कंठ लावै इहो बिरद स्वामी संदा विनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा कील करंदा बिहागड़ा महला पंजवां हर चरण सरोवर तह करो निवास मना हर चरण सरोवर तह करो निवास मना कर मज्जन हर सरय सब किल बिखनास मना कर सदा मज्जन गोबिंद सज्जन दुख अंधेरा नासै जन्म मरण न होए तिसको कटै जम की फासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूरन आसो बिनवंत नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो तय आनंद विनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावे संत जना प्रभ का जय करो राम मिल संत गावै खसम भावै हर प्रेम रस रंग भिनिया हर लाभ पाया आप मिटाया मिले चिरी विछुनिया गह पूजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम अपारो बिरवंत नानक सदा निर्मल सच सावद रुण चका रुण चुनकारो सुन बट भागिया हर अमृत बाणी राम जिन को कर्म लिखी तिस हृदय समाणी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभ कृपा करे अमृत हिया फिर न मुआ काल कलेसा दुख हरे हर सरन पाई तज न जाई प्रभ प्रीत मन तन पाणी बिनवंत नानक सदा गाइये पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत पए किछ कहन न जाई राम जिस ते उपजे अड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल महिल एक रव्या नह दूजा दृष्ट आया वण तिन त्रिपवन पूर पूरन कीमत कहन न जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन एह बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवां खोजत संत फिर है प्रभ प्राण अधारे राम तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम प्रभ मिलो प्यारे मया धारे कर दया लड़लाए लीजिए देहो नाम अपना जपो स्वामी हर दर्स पेखै जीजिए समरथ पूरन सदा निहचल ऊच अगम अपारे बिनवंत नानक धार कृपा मिलो प्राण प्यारे जप तप वरत कीने पेखण को चरना राम तप दिन कतह बुझहै बिन स्वामी सरणा राम प्रभ सरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारिय अनाथ निर्गुण कछ न जाना मेरा गुण अवगुण ना विचारिये दीन दयाल गोपाल प्रीतम समरथ कारण करना नानक चात्रिक हर बूंद मांगै जप जीवा हर हर चरण अम्या सरोवर पियो हर हर नाम नामा राम अम्या सरोवर पियो हर हर नामा राम संत संग मिले जप पूर्ण कामा राम सब काम पूर्ण दुख बदीरन हर निमख मनो न विसरै आनंद आंदिन सदा साचा सर्व गुण जगदीसरै अगणत ऊच पार ठाकुर अगम जाको धामा बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन मिले श्री रंग रामा कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम हर नाम जपत सुहंत प्राणी तां की महिमा कित गना हर विसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सदा मना हर विसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन साध मना शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊच अगम अपारे बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे बिहागड़ा महला पंजवां शांत अन काए रातड़िया वाट दुहेली राम पाप कमाव दिया तेरा कोई न बेली राम कोई न बेली होए तेरा सदा पछो तावै गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदहों से देह आवै तरवर विछुन्ने नह पात जुड़ते जम मग गौन अकेली बिनवंत नानक बिन राम हर के बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली तू बलवंच लोक करै सब जाणै जानी राम लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम किरत कमाणे दुख सोह प्राणी अनक जोन परमाया महामोनि संग राता रतन जन्म गवाया एक सहर के नाम बजहो आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया भरम मोहे लुवाणी बीच न कोई करे अकिरत घन विछड़ पाया आए खरे कठिन जम कंकर पकड़ लै।

अनक जतन कर हिर दे राख्या रतना सबश पाया हर गुण कहते कहन न जाय जैसे गुंगे की मिठाई रहाओ रसना रमत है सुनत सुख श्रवना चित जित सुख होई को भीखन दो नैन संतोखे जह देखा तह सोई। तना श्री महला पहला कर पहला चुप देखो ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद। जियो डरत है अपना कैसो करे पुकार दुख विसारण सेवया सदा सदा दातार साहे मेरा नीत नवा सदा सदा दातार रहाओ। आनंदन साहब शरीफ है आनंदन साहब से भी है अंत छाए सोए सुन सुन मेरी कामनी पारे उतारा होए दयाल तेरे नाम तरह सतगुर बाणे जाऊं रहाओ। सरबंग सोचाए गए दूजा नाही कोए ताकि सेवा सो करे जा को नदर करे तुद बाज प्यारे केव रहा सावड़े आई दे जित नाम तेरे लाग रहा। दूजा नाही कोई जैसे आगे प्यारे जाए कहाँ रहा उसे भी सहब अपना वरना जाचो कोए नानक ताका दास है बिंद बिंद चुक चुक होए सब तेरे नाम बिटो बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ। त्रासरी महला पहला हम आदमी है एकदम ही मोहलत मोत ना जाना नानक बनवै ते सहसरे वो जाके जी पुराणा दे जीवन विचार देख किते के दिना रहाओ। सास मास सब जियो तुम्हारा तू मैं खरा प्यारा नानक साहेब नानक साहिर कहते सच्चे पर्व दिगारा जो तू किसे ना दे मेरे साहिबा क्या को कड़ा गहना नानक बिन मैं सोह के सिपाही पुरब लिखे का लहना नाम कसम का चेतना किया कपड़े कपड़े कुमाना जम दुआर जा पकड़े चिलाया चलदा पछताण जब लग दुनिया रही है नानक के सुनिए किस कही है पाल रहे हाम रहन पाया है जीवत मर रही है। तनासी महला पहला कर दूजा को ओंकार सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिमरिया नहीं जाए तप हया हो जीड़ा बल लाए सिर सवारे साचा सोए ते सुबसरे चंगा क्यों होए हिकमत हुक्म न पाया जाए क्यों कर साच मिलो मेरी माए रहा वखर नाम वेखण कोई जाए ना को जाके ना को खाए लोक पतीन ना पत होए ता पत रह रख जा सोए जा देखा तह रहा समाए तुद बिन दूजी ना ही जाए जे को करे कीते क्या होए जिस नो बख्श साचा सोए हुण उठे चलना मोहत के ताल क्या मोह देसा गुण नहीं नाल जैसी नदर करे तैसा होए बिन कम बिन नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी महला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए आत्मा द्रवै रह ले बुलाए आत्मा परमात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे गुरप्रसादी पाया जाए हर सिंह चित लागे प्रकाल न खाए रहाओ सच सिमरे होवे प्रगास ताते बिखिया माहे उदास ताते बिखिया मेरे उदास सतगुर की ऐसी वडियाई। पुत्र गलत विच गत पाई ऐसी सेव सेवा करे जिसके जीवत से आगे तर सह पावे सुप्रवान सो सेवक धरके पावे मान सतगुरु की मूरत हृदय बसाए जो च सोई फल पाए साचा साहेब कृपा करे सो सेवक

गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुनियाई दीप की बारी कशली पट मंजरी टोडी कही अलाप कमोदी ओ गुजरी संग दीप के थाप कालंका कुंतल्यो रामा कमल कोसम चंप के नामा गौरा ओ कांदरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीप के जाना सब मिल श्री राघव गावे पांचो संग वरंगन लावे बैरारी कर्नाटी तवरी गवरी गावे असावरी तेह पाछे सिंधवी आलापी श्री राघ सो पांचो थापी सालू सारग सागरा और गुण गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुण कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वै गावे पांचो संग बरंगन लावे सोरठ गुण मलारी तुनि पुन गावे आसा गुण गुनी उच्चे सोर सुहो पुन कीनी मेघ रास पांचो चीनी